0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

ऑफिसची वेळ झाली 5 वाजले, लॅपटॉप बंद केला, बॅग उचलली आणि मनात म्हटलं चला आता घरी जाऊन आयुष्य जगूया. असं तुम्ही पण प्लॅन करतायत ना? पण एवढ्यात बॉसचा मेसेज येतो, एक छोटस काम आहे तितकं करून जाणार. आणि छोटस काम म्हणजे 2 ते 3 तास लागतातच, कारण आपल्या देशात कामाची वेळ संपते. पण काम काही संपत नाहीये. तर एका सर्वे मध्ये भारतातील तब्बल 24% कर्मचारी आठवड्याला 16 तास किंवा त्याहून जास्त काम करतायत, म्हणजे ओव्हर टाइम करतायत 24% कर्मचारी. यात तुमचा सुद्धा नंबर असू शकतो. आणि जवळपास 40% कर्मचारी दर आठवड्याला 6 ते 15 तास अनपेड एक्स्ट्रा काम करतायत. म्हणजे या सर्वेत असं आहे की भारतात जगातील सर्वात जास्त अनपेड वर्क केला जातो आणि ओव्हरटाईम सुद्धा केला जातो. म्हणजे पगार मिळतो कामाच्या वेळेचा, पण काम 24 तास करावं लागते. आणि गमत म्हणजे काय माहिती का, आपण जर वेळेवर घरी जायचा प्रयत्न केला तर प्रश्न येतो काय रे आज काही काम नाही का? मतलब इंसान 8 घंटे काम करे और फिर वक्त पर बाहर निकलने के टाइम पर बॉस सवाल करता है बहुत जल्दी जा रहा है. भाई जल्दी थोड़ी जा रहा है, 9 से 5 का टाइम है, 5 बजे निकल रहा है. और कुछ कुछ चाटुकार एम्प्लॉय ऐसे भी होते हैं जो कि 5 बजे उनका काम भले ही खत्म हुआ लेकिन निकलेंगे 5:30-6 बजे, क्योंकि इंप्रेशन उनको जमाना होता है और वो समझते कि थोड़ा एक्स्ट्रा रुकने से ना तो मैं मेरी वैल्यू बढ़ाऊंगा और बॉस की नजरों में हीरो बन जाऊंगा. भाई तुम तो 5 बजे कट लो, मैं 5:30-6 बजे तक रुकूंगा. करते कुछ नहीं, बस चाटुकारी करते हैं. तो ऐसे भी एम्प्लॉय ना तो इंडिया में बहुत है. इसीलिए ना तो सबसे ज्यादा खराब इंडिया में वर्क लाइफ बैलेंस हो चुका है. बट एक बात याद रखो, बॉस के लिए काम कभी खत्म नहीं होता लेकिन एम्प्लॉय के लिए उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है. टुमारो इज अनदर वर्किंग डे, ये याद रखो. क्योंकि देखो भाई, आपकी जिंदगी बस 9 to 5 में नहीं है, उसके बाद भी आपकी कुछ पर्सनल जिंदगी है. बट एक बात तो है यार, पूरे दुनिया में इंडिया का ही वर्क कल्चर सबसे खराब है, जहां पर ओवर टाइम के ना पैसे दिए जाते हैं ना अप्रिशिएट किया जाता है. खैर क्या करें, आदत से मजबूर. जाऊं दिया, स्टे ट्यून्ड.

गानों के किस्से तेरे मेरे हिस्से आरजे अदनान आपके साथ है ऑन MGM 90.8 FM। जब कभी ना तो पुराने किसी बैंड की बात निकलती है तो जल्द इस बैंड का नाम और उसके गाने हमारे जहन में बजने लगते हैं। ये पॉप रॉक बैंड था, गोहर मुमताज इसके फाउंडर थे और इसी बैंड से अति वसलम ये एक नया चेहरा दुनिया के सामने आया था। इनका पहला गाना था ये गाना अपने समय में एक म्यूजिक का नया चेहरा बना था और बहुत सुपरहिट रहा था और आज तक ये गाना बहुत सुपरहिट है। यहाँ तक कि जल इस बैंड के तकरीबन जितने भी गाने हैं ना उतने सब आज के वक्त में भी उतने सुपरहिट है और उतने ही लोगों को पसंद आते हैं। और इसी फिल्म का अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में ये गाना कलयुग फिल्म में 2005 में लिया गया था। चलिए फिर यही गाना भी एंजॉय करते हैं जल इस बैंड से। गानों के किस्से तेरे मेरे हिस्से में आरजे अदनान आपके साथ है। स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।
2: It's P on the track. Let's go.

हेलो, क्या हाल चाल? एकदम मस्त। तो बढ़िया हो तो हो गए अभी आप। तो बात कुछ ऐसी है कि देखो भाई साहब, शो में तो मेरी और आपकी बातें तो होती रहती, मुलाकातें होती रहती, लेकिन आफ्टर शो भी ना तो हम कनेक्ट रह सकते हैं। वो कैसे जानते हो? सोशल मीडिया के जरिए। सो इंस्टा आईडी याद रखिएगा, RJ अदनान इस बंदे का इंस्टा आईडी है। वहाँ पर भी ना तो मनोरंजनात्मक चीज़ें जो होती वो आपको दिखाई देगी, क्योंकि इंस्टा के ऊपर तो भाई क्या होता है, विदाउट फिल्टर वाली चीज़ें होती है और मस्त मौला माहौल होता है। तो आफ्टर शो भी हम कनेक्ट रह सकते हैं। सो मेरा इंस्टा आईडी है RJ अदनान, उसको फॉलो कीजिएगा। कुछ मैं रील्स अपलोड करता हूँ ना, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगी, चाहे फिर वो कुछ सॉन्ग डिकोडिंग के हो, शायरी के हो, कॉमेडी के हो, ऐसा मिक्स एकदम कल्चर होता है। सो देखिएगा जरूर। और हाँ, इसी के साथ MGM 90.8 FM का ऑफिशियल इंस्टा आईडी है, उस पर भी जाकर आप फॉलो नाम का जो बटन है वो प्रेस कर सकते हो। और बाकी शो के रिलेटेड कुछ सजेशन हो गए, कुछ फीडबैक हो गए, आप वहां पर DM में मुझे लिखकर भेज सकते हो। आईडी याद रखिए, RJ अदनान अज्ञान नहीं, वरना मेरा नाम का बदनाम करना बहुत अच्छे से आता है लोगों को, अदनान का अज्ञान कर देते हैं। RJ_ADNAN इतना याद रखिए। बाकी तो आप अगला गाना एंजॉय कीजिएगा। Only on MGM 90.8 FM. Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: हाँ जी, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, बढ़िया.
1: All is well. RJ and Nanaka morning show. Freshness light radio ka flow.
0: On MGM 90.8 FM. RJ Adnan आपके साथ है on MGM 90.8 FM. बड़ा वक्त हो चुका है मेरा था कहने का, यानी कि RJ Adnan आपके साथ था, टाप टाटा बाय बाय कर रहा है. मैं तो चला अब अपनी गली. आज का शो आपको कैसा लगा? आई होप कि पसंद आया होगा. तो आपका फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा DMKG का इंस्टा पर, RJ Adnan इस इंस्टा पेज पर, या फिर व्हाट्सएप कीजिए 9359320080. इस नंबर पर आपका फीडबैक बहुत जरूरी है. और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिएगा, फॉलोअर्स भी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है. बाकी तो अपना ख्याल रखिएगा, आराम से गाड़ी चलाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए सुनते रहिए MGM 90.8 FM. मिलते हैं अगले अपने शो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

Yo ni a la luna con la de...

0: डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी. डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, यूएटी क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट. वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3. पत्ता: गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर. कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331.
1: स्ट्रेस, एन्झायटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
0: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
0: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर. और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.

0: त्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी. डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर. उपलब्ध सुविधा: डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरओपी स्क्रीनिंग, यूईटी क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट. वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3. पत्ता: गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर. कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331.
1: स्ट्रेस, एन्झायटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
0: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ईसीटी काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
0: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर. और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.

realize that I'm

0: डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी. डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर. उपलब्ध सुविधा: डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरओपी स्क्रीनिंग, यूईटी क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट. वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3. पत्ता: गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर. कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331.
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
0: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
0: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर. और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.

0: डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी. डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरओपी स्क्रीनिंग, यूईटी क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट. वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3. पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर. कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331.
1: स्ट्रेस, एन्झायटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
0: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
0: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर. और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर.

0: डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी. डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरओपी स्क्रीनिंग, यूएटी क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट. वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3. पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर. कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331.
1: स्ट्रेस, एन्झायटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
0: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
0: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर. और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.

0: स्वयंच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी. डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, यूएटी क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट. वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3. पत्ता: गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर. कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331.
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
0: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
0: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपती संभाजीनगर. और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम, नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन 5, छत्रपती संभाजीनगर.

आपने नोटिस किया होगा कि अपने शहर में नो पार्किंग के बोर्ड्स लगाना बहुत इजी है, लेकिन पार्किंग बनाना शायद पीएचडी लेवल का काम हो सकता है। गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी मिली, महानगर पालिका वाले आते हैं और गाड़ी उठाकर लेकर चले जाते हैं। अब भाई सवाल यह है कि गाड़ी वाले की गलती है तो पार्किंग मिलेगी कहाँ? क्योंकि अगर प्रॉपर पार्किंग अवेलेबल होती तो आदमी को कोई शौक नहीं है नो पार्किंग में अपनी गाड़ी लगवाकर घूमने का। समझे क्या मतलब? सिस्टम क्या बोलता है? रोड पर गाड़ी मत लगाओ। पब्लिक पूछती है तो लगाए कहाँ? तो सिस्टम कहता है ये आपकी प्रॉब्लम है लेकिन रोड पर गाड़ी मत लगाओ। तो भाई साहब पहले पार्किंग तो तैयार करो। पार्किंग नहीं, जगह नहीं, लेकिन नो पार्किंग के बोर्ड फुल कॉन्फिडेंस में है। आप बताओ पहले पार्किंग होनी चाहिए या पहले नो पार्किंग का फाइन होना चाहिए? किसी को भी शौक नहीं होता है नो पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करने की। हालांकि अपने शहर में अगर पार्किंग की व्यवस्था एकदम प्रॉपर होती तो कोई भी नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी नहीं करता। बट ये एक बड़ा सवाल है और इसके ऊपर सोल्यूशन तो कब मिलेगा ये तो मैं भी नहीं जानता। बट एक बात याद रखिए, नो पार्किंग में अगर गाड़ी लगाओगे तो वो एक ही सिस्टम है जो कि प्रॉपर ईमानदारी से काम करता है और आपकी गाड़ी उठाकर लेकर चला जाएगा। इस वजह से पार्किंग की जगह पर गाड़ी लगाओ। हाँ, सवाल वो भी है कि पार्किंग है कहाँ? जवाब आपको मिले तो मुझे भी बताना। बाकी महानगर पालिका है कहाँ पर पार्किंग शहर में, पहले वो तो बनवाओ, बाकी फिर देखो सिस्टम कैसा है। खैर आप क्या ही बोले, आदत हो चुकी है, चलता है चलने दो बोलकर बस चलता ही जा रहा है। फिलहाल चलाते एक बेहतरीन सा गाना आपका मूड फ्रेश करने के लिए। स्टे ट्यून ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी. डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर. उपलब्ध सुविधा: डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरओपी स्क्रीनिंग, यूएटी क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट. वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3. पत्ता: गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर. कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331.
1: स्ट्रेस, एन्झायटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
0: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
0: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर. और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.
2: आज प्यार की होड़ी
3: दिल बोले तो
4: हार्ट हार्ट
3: अमा यार सौदा सौदा
4: ओहो
2: दोनों डील कर
4: टाइट, वेरी टाइट.

0: डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी. डॉक्टर अभिजित गोरे वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरओपी स्क्रीनिंग, यूएटी क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट. वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3. पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर. कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331.
1: स्ट्रेस, एन्झायटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
0: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
0: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर. और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.

ऑफिसची वेळ झाली 5 वाजले, लॅपटॉप बंद केला, बॅग उचलली आणि मनात म्हटलं चला आता घरी जाऊन आयुष्य जगूया. असं तुम्ही पण प्लॅन करतायत ना? पण एवढ्यात बॉसचा मेसेज येतो, एक छोटस काम आहे तितकं करून जाणार. आणि छोटस काम म्हणजे 2 ते 3 तास लागतातच, कारण आपल्या देशात कामाची वेळ संपते पण काम काही संपत नाहीये. तर एका सर्वे मध्ये भारतातील तब्बल 24% कर्मचारी आठवड्याला 16 तास किंवा त्याहून जास्त काम करतायत, म्हणजे ओव्हर टाइम करतायत 24% कर्मचारी. यात तुमचा सुद्धा नंबर असू शकतो. आणि जवळपास 40% कर्मचारी दर आठवड्याला 6 ते 15 तास अनपेड एक्स्ट्रा काम करतायत. म्हणजे या सर्वेत असं आहे की भारतात जगातील सर्वात जास्त अनपेड वर्क केला जातो आणि ओव्हर टाइम सुद्धा केला जातो. म्हणजे पगार मिळतो कामाच्या वेळेचा, पण काम 24 तास करावं लागते. आणि गमत म्हणजे काय माहिती का, आपण जर वेळेवर घरी जायचा प्रयत्न केला तर प्रश्न येतो, काय रे आज काही काम नाही का? मतलब इन्सान 8 घंटे काम करे और फिर वक्त पर बाहर निकलने के टाइम पर बॉस सवाल करता है बहुत जल्दी जा रहा है. भाई जल्दी थोड़ी जा रहा है, 9 से 5 का टाइम है, 5 बजे निकल रहा है. और कुछ कुछ चाटुकार एम्प्लॉय ऐसे भी होते हैं जो कि 5 बजे उनका काम भले ही खत्म हुआ लेकिन निकलेंगे 5:30-6 बजे, क्योंकि इंप्रेशन उनको जमाना होता है और वो समझते कि थोड़ा एक्स्ट्रा रुकने से ना तो मैं मेरी वैल्यू बढ़ाऊंगा और बॉस की नजरों में हीरो बन जाऊंगा. भाई तुम तो 5 बजे कट लो, मैं 5:30-6 बजे तक रुकूंगा. करते कुछ नहीं, बस चाटुकारी करते हैं. तो ऐसे भी एम्प्लॉय ना तो इंडिया में बहुत है. इसीलिए ना तो सबसे ज्यादा खराब इंडिया में वर्क लाइफ बैलेंस हो चुका है. बट एक बात याद रखो, बॉस के लिए काम कभी खत्म नहीं होता लेकिन एम्प्लॉय के लिए उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है. टुमारो इज अनदर वर्किंग डे, ये याद रखो. क्योंकि देखो भाई, आपकी जिंदगी बस 9 to 5 में नहीं है, उसके बाद भी आपकी कुछ पर्सनल जिंदगी है. बट एक बात तो है यार, पूरे दुनिया में इंडिया का ही वर्क कल्चर सबसे खराब है, जहां पर ओवर टाइम के ना पैसे दिए जाते हैं ना अप्रिशिएट किया जाता है. खैर क्या करें, आदत से मजबूर. जाऊं दिया, स्टे ट्यून्ड.

0: डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी. डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर. उपलब्ध सुविधा: डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरओपी स्क्रीनिंग, यूएटी क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट. वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3. पत्ता: गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर. कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331.
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
0: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
0: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर. और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर.

गानों के किस्से तेरे मेरे हिस्से आरजे अदनान आपके साथ है ऑन एमजीएम 90.8 FM। जब कभी ना तो पुराने किसी बैंड की बात निकलती है तो जल इस बैंड का नाम और उसके गाने हमारे जहन में बजने लगते हैं। ये पॉप रॉक बैंड था, गौहर मुमताज इसके फाउंडर थे और इसी बैंड से अतीफ असलम ये एक नया चेहरा दुनिया के सामने आया था। इनका पहला गाना था ये गाना अपने समय में एक म्यूजिक का नया चेहरा बना था और बहुत सुपरहिट रहा था और आज तक ये गाना बहुत सुपरहिट है। यहाँ तक कि जल इस बैंड के तकरीबन जितने भी गाने हैं ना उतने सब आज के वक्त में भी उतने सुपरहिट है और उतने ही लोगों को पसंद आते हैं। और इसी फिल्म का अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में ये गाना कलयुग फिल्म में 2005 में लिया गया था। चलिए फिर यही गाना भी एंजॉय करते हैं जल इस बैंड से। गानों के किस्से तेरे मेरे हिस्से में आरजे अदनान आपके साथ है। स्टे ट्यून्ड ऑन एमजीएम 90.8 FM।

0: हेलो, क्या हाल चाल? एकदम मस्त। तो बढ़िया हो तो होगी अभी आप।
1: Only on MGM 90.8 FM.
0: तो बात कुछ ऐसी है कि देखो भाई साहब, शो में तो मेरी और आपकी बातें तो होती रहती, मुलाकातें होती रहती, लेकिन आफ्टर शो भी ना तो हम कनेक्ट रह सकते हैं। वो कैसे जानते हो? सोशल मीडिया के जरिए। सो इंस्टा आईडी याद रखिएगा, RJ अदनान इस बंदे का इंस्टा आईडी है। वहाँ पर भी ना तो मनोरंजनात्मक चीज़ें जो होती वो आपको दिखाई देगी, क्योंकि इंस्टा के ऊपर तो भाई क्या होता है, विदाउट फिल्टर वाली चीज़ें होती है और मस्त मौला माहौल होता है। तो आफ्टर शो भी हम कनेक्ट रह सकते हैं। सो मेरा इंस्टा आईडी है RJ अदनान, उसको फॉलो कीजिएगा। कुछ मैं रील्स अपलोड करता हूँ ना, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगी, चाहे फिर वो कुछ सॉन्ग डिकोडिंग के हो, शायरी के हो, कॉमेडी के हो, ऐसा मिक्स एकदम कल्चर होता है। सो देखिएगा जरूर। और हाँ, इसी के साथ MGM 90.8 FM का ऑफिशियल इंस्टा आईडी है, उस पर भी जाकर आप फॉलो नाम का जो बटन है वो प्रेस कर सकते हो। और बाकी शो के रिलेटेड कुछ सजेशन हो गए, कुछ फीडबैक हो गए, आप वहां पर DM में मुझे लिखकर भेज सकते हो। आईडी याद रखिए, RJ अदनान, अज्ञान नहीं, वरना मेरा नाम का बदनाम करना बहुत अच्छे से आता है लोगों को, अदनान का अज्ञान कर देते हैं। RJ_ADNAN इतना याद रखिए। बाकी तो आप अगला गाना एंजॉय कीजिएगा। Only on MGM 90.8 FM.
1: Only on MGM 90.8 FM.

आजकल हम सभी लोगों ने साइबर सिक्योरिटी के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन सुनने के बाद हमें लगता है यार क्या ही लोग लेक्चर देते हैं ना। तो बात ये लेक्चर की नहीं है, बहुत गहरी बात है। कॉलेज स्टूडेंट सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव, एक दिन उसे अनजान प्रोफाइल से मैसेज आता है, हाय आई सॉ योर प्रोफाइल और आप बहुत अच्छी हो। तो लड़की ने सोचा कि चलो थोड़ी बात कर लेती हूँ। कुछ दिन बात हुई, लड़की ने खुद को बड़े कंपनी का HR मैनेजर बताया, बोला कि वो उसे ना तो इंटर्नशिप दिलवा सकता है, बस उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक फोटो भेज दो। प्रिया ने भी फोटो भेज दिए, लेकिन कुछ दिन बाद उसी फोटो को एडिट करके वायरल कर दिया गया। प्रिया का भरोसा, कॉन्फिडेंस सब कुछ टूट गया। अब आप लोग ही सोचिएगा कि एक क्लिक में आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो इसीलिए साइबर सेफ्टी कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है, ये आज की जरूरत है। तो किसी भी लिंक, किसी भी अनजान मैसेज, किसी भी ऑफर पर आग बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। आपकी ऑनलाइन जिंदगी आपकी असली पहचान है, उससे बचा कर रखिएगा। और अननोन इंसान से आप फ्रेंडशिप कर रहे हो ना, तो जरा सोच समझ के कीजिएगा। सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो सच नहीं होता, याद रखिएगा। कोई आपको कह रहा हो कि बड़े कंपनी में HR हो, मैनेजर हो, ये हो, वो हो, तो क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा किसी को डॉक्यूमेंट सेंड करने से पहले, क्योंकि एक गलती पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ साइबर फ्रॉड हो रहा हो तो बेझिझक आप कॉल कर सकते हो साइबर क्राइम में, नंबर है 1930। ये नंबर याद रखिए, सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए और सुनते रहिए MGM 90.8 FM।

0: MGM 90.8 FM साथ है तो बात है।
1: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे

को ये बता दो, कह दो हर नजर से, सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से।

करूं, चाहे फूलों के साथ खेलूं, चाहे कली